दरेगो फ्रतिमत्विं च अंगाओ दिन्याओ यत हुरोईश जरथुष्ट्रोईश असिस्नो अंगहत हच विसद गाउश पुया असिस्तिम अशिम असिस्तिम नरस अशाउनो औजो असिस्टो अहुरोईश तकेशो जम्यां इथर अशाउनं वंगुहीश सुराव स्पेंताव फ्रवशयो अशोईश बैशेज हचीमनाव जम फ्रदंग रानुद्राव जंग हवरे बरे जंग इस्ते वचंगाम पैटीस्त

आउत मा यवे इमत नमानेम खात्रवत खरेनो फ्रजही। मा खात्रवैति इष्टीश मा खात्रवैति आसन फ्रजेन्तीश खात्रो दिश्ये पैति अशोईश्वं।

गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।

0: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
1: Salok Mahalla Duja Tesasyon kaisa bolna je ape jana jana Chiri jaki na firai sahib so pravana Chiri jiski chalana meer malk salar Jyotis pavai nanka sai palikar Jinnah chiri chalana Hath tina kishna hai साहिब का फरमान होए उठी कर ले पाहे जेहा चिरी लिखिया तेहा हुकम कमाहे कल्ले आवे नानका सदे उठी जाहे महला दूजा सिफत जिन्ना को बख्शी ऐसे ही पोतेदार कुंजी जिन को दितिया तिन्ना मिले पंडार जय पंडारी हूं कुण निकले ते की ए प्रवान नजर तिना को नानका नाम जिना निशान पौड़ी नाम निरंजन निर्मला सुनया सुख होई सुन सुन मन वसाई है बुझे जन कोई बहंदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भक्ता को नाम आधार है नामे सुख होई नानक मंतन रव रहया गुरमुख हर सोई सलोक महला पहला नानक तुलिया तोल जे जियो पिछे पाई है एक सना पुजे भोल जे पूरा पूरा कर मिले वड्डा आखण पारा तोल होर हौली मत्ती हौले बोल धरती पानी पर्वत पार क्यों कंडे तोले सुनियार तोला मासा रतक पाए नानक पुछां दे पुजाए मूर्ख अंध्यां दी तात कह कह कहण कहान आप महला पहला आखने औखा सुनने औखा आखना जापी आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात जे केहो होए ता केहो दिसे जापै रूप ना जात सब कारण करता करे काटे औ कट कट काट काटे औ कट कट थाप आखने औखा नानका आपना आखना जापै आख पौड़ी नाए सुनया मन रेसी है नामे सांत आई नाए सुनया मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुनया ना उपजे नामे वडे आई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम ते आई है नानक लेवलाई श्लोक महला पहला झूठ ना रागी झूठ ना वेदी झूठ ना चंद सूरज की भेदी झूठ ना यानी झूठ ना नाई झूठ ना मीहो वरे है सब थाई जूठना धरती जूठना पानी जूठना पौने महेश वाणी नानक निगुरिया गुण नाही कोए मोहे फेरे है मोह जूठा होए महला पहला नानक चुलिया सुचिया जे पर जाने कोए सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना तो पई मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनया सब सिद्ध है रिद पिछे आवै नाए सुनया नौ निध मिलै मन चिंदिया पावै नाए सुनया संतोख होए कबला चरण ते आवै नाए सुनया सहज उपजै सहजे सुख पावै गुरमति ना उपाई है नानक गुण गावे श्लोक महला पहला दुख विच जमण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखी है पड़ पड़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकलो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मंतन हरिया होए दुख किया अगी मारी है पी दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पसु हूं पस खे पसो पस कमावनी पी पस भरिया दे जां जियो विचों कढ़ी है पसु भरिया जाए अगे लेखा मंगे है होर दसुनी पाए पौड़ी नाए सुने सुच संजमो ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਘੜ ਚਾਨਣਾ ਅਨੇਰ ਗਵਾਵੈ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਆ ਬੁੱਝੀਐ ਲਾਹਾ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਪਾਪ ਕੱਟੀਐ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਭਾ ਨਾਲ, ਪੂਜ ਕਰੇ ਰੱਖੈ ਨਾ ਵਾਲ, ਕੁੰਗੂ ਚੰਨਣ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਏ, ਮਾਣੂਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਹਿਨੈ ਖਾਏ, ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਏ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਰਦਿਆ ਰੱਖੈ, ਅੰਧਾ ਚੱਖੜਾ ਅੰਧਾ ਝਗੜਾ ਅੰਧੀ ਸਖੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੇ ਸੁਰਤੀ ਯੋਗ ਸਭ, ਸਭੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸਭੇ ਕਰਨੇ ਤਪ ਸਭ, ਸਭੇ ਗੀਤ ਗਿਆਨ, ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਸੁਧ ਸਭ, ਸਭ ਤੀਰਥ ਸਭ ਥਾਨ, ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਮਰ ਸਭ, ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਖਾਨ, ਸਭੇ ਮਾਨਸ ਦੇਵ ਸਭ, ਸਭੇ ਯੋਗ ਧਿਆਨ, ਸਭੇ ਪੁਰੀਆਂ ਖੰਡ ਸਭ, ਸਭੇ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹਿ ਕਲਾਮ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀ ਬਾਣ ਪੌੜੀ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਨਾਮੇ ਗਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਪਾਈਐ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸੋਈ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਭਵਜਲ ਲੰਘੀਐ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਾਮੇ ਸਭ ਲੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀਐ ਜਿੰਦੇ ਵੈ ਸੋਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰੀਆਂ ਖੰਡਾ ਸਿਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਆਏ, ਪਾਉਣ ਮਾਰ ਮਨ ਜਪ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਮੁੰਡੀ ਤਲੈ ਦੇ, ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕੈ, ਕਿਸਨੋ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਕਿਸਨੋ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਹਾਏ ਆਪਣੇ, ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੁਕਮ ਰਹਾਏ ਆਪਣੇ।

देवै आप दयाल ना छपै छिपाइया। हृदय कवल प्रगास उन मन लिवलाइया। जे को करे उस दी रीस सिरशाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सदगुर की वड्याइया। सलोक महला तीजा। अमर वे प्रवाहो है तिस नाल सियाणपना चलई। ना हुजत करनी जाए आप छोड़ सरनाए पवै मन लहे रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई हाँ मैं विच हों जाए। नानक सेवक सोई आखिया जे सच रह लिवलाए। महला तीजा। दात जोत सब सूरत तेरी बहुत सियाणप हों मैं मेरी। बहु कर्म कमावै लो मुह व्यापे हों मैं कदे ना चूकै फेरी। नानक आप कराए करता जोत पावै साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवां। सच खाना सच पहनना सच नाम आधार। गुरपुरै मिलाया प्रभ देवनहार। भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार। साधु संगत लग्या तरिया संसार। नानक सब सलाहकार प्रभ का जयकार। श्लोक महला पंजवां। सबे जी समाले अपनी मेहर कर। अन पानी मुचो पाए दुख दल्द पहन तार। अरदास सुनी दातार होई सिष्ट ठार। लेवो कंठ लगाए अपदा सब हार। नानक नाम ते आए प्रभ का सफल कार। महला पंजवां। वुठे मेघ सुहावने हुक्म कीता करतार। रिज को पायो ने अगला ठंड पई संसार। तन मन हरिया होया सिमरत अगम अपार। कर कृपा प्रभ अपनी सच्चे सृजनहार। कीता लोड़ सो करै नानक सदबरिहार। पौड़ी। वड्डा आप अगम है वड्डी वड्याई। गुरसबदी वेख विकसिया अंतर सांत आई। सब आपे आप वरदा आपे है पाई। आप नाथ सब नथियन सब हुक्म चलाई। नानक हर पावै सो करे सब चलै रजाई। सुध राग सारंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। कहा नर गर्भस्थोरी बात मन दस दाज टकाचार गांठी एंडो टेंडो जात। रहाओ बहुत प्रताप गांव सौ पाए दो लख टका बरात। दिवस चार की करो साहेबी जैसे बनहर पात। ना को लै आयो एहो तन ना को लै जात। रावण हूते अधिक शत्रपात खिन में गए बिलात। हर के संत सदा थिर पूजो जो हर नाम जपात। जिन को कृपा करत है गोविंद ते सतसंग मिलात। मात पिता बंता सुत संपत अंत न चलत संगात। कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात। राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी। रहाओ हस्तो जाए सो रोवत आवै रोवत जाए सो हसै। बस तो होए होए सो उजर उजर होए सो बसै।

खेल परयो है तो सियो रहाओ। आपन देओ देहो राय आपनो, आप लगावे पूजा। जल ते तरंग, तरंग ते है जल। कहन सुन कहो दूजा। आपै गावे आपै नाचै, आप बजावे तूरा। कहत नाम देओ तू मेरो ठाकरो, जन ऊरा तू पूरा। दास अनिन मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रई मोचन। परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाओ। मेरी बांदी भगत छिड़ावै, बांदै भगत ना छूटै मोहे। एक समय मोको गहे बांदै, तौ फन मोपै जवाब ना होए। मैं गुणबंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास। नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ता कै प्रेम प्रगास। सारंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तै नर क्या प्राण सुन कीना। अन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ। काम ना बिसरियो, क्रोध नाम बिसरियो। लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी। निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो। पेट भरै अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त। सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी। जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल। कथा पुनीत ना चाली, शाड़ मानो हर बिमुखन को संग। सारंग महला पंजवा, सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो। आनंद सहज धुन चोक रहाओ। दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक। आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो कुष्टि तन जोक। सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो एहो परलोक। सारंग कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता। हित लागो सब फन का रहाओ। आगे कहो किश तुल्हा बंद हो, क्या परवासा धन का। कहां विश्वासा इस भांडे का, इतनक लागै ठनका। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का। कह कबीर सुनो रे संतो, एहो मन उड्डन पंखे रू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना। खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ। तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही। गुरमुख त्यावै से मृत पावै, से ही सुचे हो ही। अहनस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम। हर वर आण मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा। लाल रती गुण गावै, बरस घना मेरा मन पीना। अमृत बुंद सुहानी ही अरै, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुरबचनी मन मानिया। हर वर नार भई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी। सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल। पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख। तन सुहागण सच सही, मलार महला पहला। साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हो मैं करत गवाया। पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया। शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर भार लदे अत भारी, मर जन्म जन्म गवाया। मन भावै शब्द सुहाया, भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने। गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया। रतन पदार्थ पर हर त्यागया, जत को तत ही आया।
ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੀਟ ਭਏ ਉਤਹੀ ਤੇ ਉਤਹੀ ਮਹਿ ਸਮਾਇਆ ਅਧਿਕ ਸਵਾਦ ਰੋਗ ਅਧਿਕਾਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਰਹਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ ਹਮ ਨੀਚ ਹੋਤੇ ਹੀਣ ਮਤ ਝੂਠੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ਆਤਮ ਚੀਨ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਰਨ ਸਜ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਬੈਸ ਸੁਥਾਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਥੋਂ ਅਪਾਰਾ ਅਲਖ ਨ ਲਖੀਐ ਅਗਮਾ ਜੋਨੀ ਤੂੰ ਨਾਥਾ ਨਾਥਨਹਾਰਾ ਕਿਸ ਪੈ ਦੇਖ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਸਭ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੇਖੋ ਇਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਉਰਤਾਰਾ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ ਧਨ ਪਿਰਕਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਾ ਬਿਲਖ ਬਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ਪਈ ਨਿਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਓ ਨਵਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ

0: अथ सवरात साध कर समदा तृष्णा क्यो तेल काम क्रोध अग्नि सो मेल होम जग अर पाठ पुराण ज्योतिष पावे सो प्रमाण तप कागद तेरा नाम निशान जिन कौ लिखिया हो निदान से तनवंत दिसै कर जाए नानक जननी धनी माए मलार महला पहला बागे कापड़ बोले बैन लम्मा नक काले तेरे नैन कभू साहिब देखिया पैन ऊंडा ऊंड चढ़ा समान साहिब समरथ तेरे तान जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर जिन तन साज दिए नाल खंभ आत तृष्णा उड़ने की डंज नदर करे ता बंदा धीर ज्यो विखाले त्यो वेखा बीर ना हो तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ पौने पाणी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर सच समावे हो शरीर।
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.